0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले

0: पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
2: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
0: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीना इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में NHPC जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में NHPC प्रोजेक्ट पर घटी। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। वाचप दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएसपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल है। मानस प्रदीप शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में दो अमेरिकी सैनिकों और इराक में एक सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के तीन दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: News, music and entertainment. FM 103 megahertz.

0: हेलो
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, बोलिए आपका शुभ नाम।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागद, जिला उज्जैन से।
0: ओके, बोले कैसे
1: जी कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हो आप?
0: बहुत बहुत बढ़िया है।
1: जी
0: आज कौन सा गीत सुनना है?
1: लगान फिल्म का सुनवा दीजिएगा, काले मेघा पानी तो बरसा।
0: लगान,
1: जी हाँ
0: देखता हूँ। ओके, चले चलो है, गनन
1: हाँ
0: गनन है, मिठुआ
1: हाँ ये
0: है।
1: गनन गनन वाला।
0: ओके, और
1: हाँ जी
0: किसी का नाम लेना है आपको?
1: जी हाँ, सबसे पहले आपके लिए डेडिकेट रहेगा ये सॉन्ग जी। उसके बाद में तनुश्री, भगवान सिंह परमार, लोकेंद्र वर्मा, तुकाराम जाधव, अस्तो, सविना संगीता जी, अमल बसमतारी, विमल।

0: असम से हैं बैकन मुंडा, और सुनील जब भोपाल से, रमेश टेलर है, ये सभी लोग कार्यक्रम सुनते हैं और मतलब बातचीत भी करते हैं।
1: ओके, और लेना है किसी का नाम? हेलो,
0: हाँ जी, हाँ आ रही आवाज, आप कैसे हैं? वैसे हमारे यहाँ पे बरसात हो रही है।
1: हाँ
0: हाँ जी, कल शाम से रुक रुक के बारिश होने लगी है,
1: तो खुश होना चाहिए, गर्मी भी थोड़ा कम हो जाएगा।
0: हाँ गर्मी कम हुई और काफी अच्छा मौसम हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है।
1: ठीक है प्रेम सिंह जी, आपने पसंद किया है लगन, और आप सुनिए और एंजॉय कीजिए, और कॉल करने के लिए शुक्रिया
0: जी, थैंक यू सो मच,
1: वेलकम। होनी ठगा सब बिलाक प्रोग्राम टे बार दूसरा गिडियो से लगन फिल्म की गीत गाय से उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और किसुमान कलाकार और यू गीत शुनी बोले मन हो गा आम खान लोते कल कर अनुरोध कर उज्जैन पर प्रेम सिंह सिसोदिया और तार एफ एम ट्राइकोपन लतार लगा किसुमान साथी खान के डेडिकेट कर दी गिना से तो शुनिया शुरू हम लगन फिल्म की गीत।

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं रमेश प्रजापति बोल रहा हूँ, ग्राम बाया तहसील रहती, जिला सीहोर, एमपी से।
0: के बोले, आज कौन सा गीत सुनने के लिए कॉल किया है?
1: हवास है क्या?
0: हाँ,
1: हवास।
0: हवास
1: जी
0: दिखू, इतना तो श्योर नहीं है, शायद हवास मेरे पास में नहीं है।
1: नहीं है?
0: नहीं है।
1: गंगा जमुना?
0: गंगा जमुना हो भी सकता है, दिखता
1: पुराना वाला है, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया। हाँ,
0: गंगा जमुना में सिर्फ और सिर्फ एक ही गीत है जो है इंसाफ की दागर पे।
1: ये दो हंसों का जोड़ा वाला नहीं है?
0: नहीं है, और तो दूसरा नहीं है। गंगा जमुना सरस्वती है, गंगा जमुना।
1: गंगा जमुना सरस्वती का सुना दो। साजन मेरा इस पार है, मिलने को दिन बेकरार।
0: ओके, और किसी को डेडिकेट करना है आपको?
1: जी, हमारे मित्र है श्री भगवान सिंह परमार है, गजराज लोधी, केसी सिंह राजपूत है, मांगीलाल चंदेल, प्रेम सिंह सिसोदिया, लोकेंद्र वर्मा जी उज्जैन से, आशुतोष जी है, संगीता जी है, और पूनम जी है कानपुर से, पूर्णिमा जी है, अविनाश जी है, राकेश जी है शिमला से, शिवा विदिशा से है, और विमल भस्माकारी है, अमल भस्माकारी, गोल्डी जी है, और अमर सिंह साहू है, रमेश पात्रे है, रक्कू विले मेहता है, तरुण श्री बिटिया है, हमारी महाराष्ट्र सबसे अच्छी बिटिया है हमारी
0: जी,
1: अभी उसका फोन लगा नहीं है, और आप।
0: ओके, थैंक यू रमेश जी कॉल करने के लिए, थैंक यू, आपका गीत सुनिए और आनंद लीजिए।
1: जी धन्यवाद मैम,
0: वेलकम। उन्हें ढंग सब बिलक प्रोग्राम टे बार दूसरा गीत दिया से गंगा जमुना सरस्वती फिल्म के गीत गाय से लता मंगेशकर और यू गीत तो होने बोले मन हुई ना कॉल करी से मध्य प्रदेश पर रमेश प्रजापति और तार पर एफ एम ट्रैकपन द्वारा तार लगा किसुमान साथी बिलक बनाए रखी गिना से दुकान के डेडिकेट करी दी गिना से तो हुनिया शुरू हो गंगा जमुना सरस्वती गीत गाय से लता मंगेशकर।

0: हेलो हेलो,
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, बोलिए आपका शुभ नाम।
1: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप आहूजा बात कर रहा हूँ मैडम। आहूजा,
0: दिलीप आहूजा,
1: पा
0: आहूजा,
1: PAHUJA।
0: पाहूजा।
1: जी
0: ओके, आज पहली बार कॉल किया है
1: नहीं, आज
0: मेरे साथ पहली बार
1: हाँ,
0: बातचीत हो रहा है
1: यू आर
0: क्या?
1: राइट, यू आर राइट।
0: ओके, स्वागत है आपको कार्यक्रम
1: बहुत
0: पे।
1: बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा सुनता हूँ
0: ओके,
1: डेली,
0: बहुत खुशी की बात है।
1: एक दिन सुबह 11:30 से 12:30 बजे तक, एक दिन शाम को 6 बजे से 7:10 तक
0: ओके
1: डेली
0: ओके,
1: सुनता हूँ।
0: शाम में तो 3 बजे से शुरू हो जाता है FM ट्रैकोपन, और 10 बजे तक स्टूडियो पे अलग अलग सा प्रोग्राम चलती रहते हैं, और सुबह
1: जी
0: का 6 बजे से 1 बजे, ऐसे है हम
1: जी
0: लोग का कार्यक्रम का टाइमिंग।
1: जी
0: ओके, बोलिए दिलीप जी, बहुत खुश है आप आज कार्यक्रम पे जुड़ी हुए हुए हैं। कौन सा गीत सुनना है आप? हेलो,
1: वो है
0: बोलिए।
1: ना गाना, एक हम साथ साथ हैं।
0: वो फिल्म का नाम है क्या?
1: जी
0: ओके, हम साथ साथ है। ओके, हम साथ साथ है। अगर ये नहीं मिला तो थोड़ा रुकिए, मैं देखती हूँ। अगर है तो हम बजाएंगे, नहीं है तो थोड़ा अलग फिल्म का नाम बोलना पड़ेगा
1: पत्थर के
0: शायद।
1: फूल,
0: हाँ,
1: ओ पत्थर के सनम, पत्थर
0: पत्थर की और
1: के सनम।
0: पत्थर के सनम। ओके, पत्थर के सनम तो है। कौन सा गीत सुनना है आपको?
1: इसका आप कोई भी सुना दीजिए, भले ही टाइटल सॉन्ग हो या कोई दूसरा हो, कोई भी।
0: ओके ठीक है, तब तो टाइटल वाला मैं बजाती हूँ आपके लिए, और किसी का नाम लेना
1: मैडम
0: चाहूंगी
1: इस
0: आप।
1: गाने को 3 जनों के साथ में मिलकर सुनेंगे, चाय की चुस्कियों के साथ। पहले आप,
0: ओके, थैंक यू।
1: दूसरे नंबर पर मेरा हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप है,
0: ओके,
1: उसके सभी लिस्नर अभी, मतलब मेरे साथी भाई अभी लाइव सुन रहे हैं। और तीसरे नंबर पर आकाशवाणी कोहिमा के जितने भी साथी ऑन ही यार अभी सुन रहे हैं लाइन, उन सभी के साथ में मैं सुनना चाहूंगा मैडम।
0: ओके, और भी लेना है?
1: नहीं बस मैडम, बस एक दो लाइनें आपके लिए अर्ज करना चाहूंगा।
0: ओके, बोले।
1: सितारों के बीच से चुराया है आपको, मन से दोस्त बनाया है आपको, इस रिश्ते को कभी टूटने मत देना, बड़ी मुश्किल से दोस्त बनाया है आपको।
0: वाह, क्या बात है। बहुत खुश हो दिलीप जी, आप आज आके लाइव फोन इन पे जुड़े हुए हैं, और आपने जो गीत पहले बार मांगा है वो मेरे पास नहीं था। बहुत बहुत
1: कोई बात नहीं,
0: खेत है
1: होता है ऐसा।
0: उसके लिए, लेकिन दूसरा जो आपने मांग किया है वो मैं जरूर बजा दूंगी। आप सुनिए और एंजॉय कीजिए।
1: थैंक
0: थैंक
1: यू
0: यू।
1: मैम।
0: होनी ढगा सब बिला खुनीबो, पत्थर के सनम फिल्म की गीत गायसे मोहम्मद राफी, और इट गेट टू पहिला बार आमिर खान लौटे कॉल करना प्रोग्राम लौटे आई कि जुड़ी कि ना से दिलीप पाहुजा राजस्थान पर कॉल करार FM ট্রাকপন লাকি সুমান দোষ লগা নাম বি লৈছে, আৰু হেল্ল' ফৰমাইজ শ্ৰোতাও তাইখান কিবি য়াদ কৰিছে, আৰু যিমান জন বি প্ৰগ্ৰাম লতে ইতিয়া জুৰি কিনা আছে আপোনাৰ খান সব কিবি ডেডিকেট কৰি দি কিনা আছে, তো এক চাথ মিলি কিনা শুনিব মহম্মদ ৰাফি লগা ৱাস্তে ফিল্ম পাথৰ কে সনম।

0: हेलो हेलो,
1: जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार। आपका शुभ नाम?
1: मैम शिवा लोहट, एमपी विदिशा।
0: शिवा लोहा। शिवा लोहा
1: जी मैम, शिवा लोहट बात कर रहा हूँ,
0: के कहाँ से?
1: एमपी विदिशा से।
0: ओके, बोले, हालचाल कैसी है?
1: मैं बढ़िया हूँ मैम, बस यही है कि पानी नहीं गिर रहा है हमारे एमपी में।
0: क्या करेगा, मौसम तो ऐसे ही होता है ना।
1: जी,
0: बोले, कौन सा गीत सुनना है आपको आज?
1: मैम लगान मूवी मिल जाएगी?
0: लगान थोड़े आगे में मैं बजा चुका हूँ, अगर आप दूसरी गीत सुनने के लिए पसंद करेगा तो बहुत खुश होगा।
1: ठीक, ओके मैम। मैं दूसरी मूवी, जीत मूवी मिल जाएगी मैम?
0: जीत हो सकता है। जीत में कौन सा गीत सुनना है? जीत में शायद मेरे पास एक ही गीत है, वो है यारा ओ यारा।
1: ठीक है मैम, यही चला दीजिएगा।
0: ओके, और किसी का नाम लेना चाहूंगी आपको?
1: जी मैम, हमारे नंबर वन श्रोता है पूरन वर्मा जी, पुरुषोत्तम कुमार जी, अविनाश जी, अमल जी, विमल जी, और हमारे मित्र रहेंगे रमेश प्रजापति जी, रमेश पात्रे जी, और तमाम सुनने वाले, और स्पेशली आप मैम।
0: ओके, थैंक यू शिवाजी। बहुत दिनों के बाद आज फिर से कार्यक्रम पे जुड़ी हुई है आप, बहुत खुश हूँ। आपके गीत सुने और एन्जॉय कीजिए। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम। हुनी ठगा सब बिल्ला खुनी बो प्रोग्राम टे बार दूसरा गीत जीत फिल्म की गीत गाय से विनोद राथर और अलका याग्निक। एक गीत तो हुनी बोले मनोगिना पसंद कर से मध्य प्रदेश पर शिवा लोहा और तार पर एफ एम ट्रैकपन लगा थ्रू पर किसुमान साथी बेला बनाए रखी गिना से तारखान के डेडिकेट कुरी गिना से हुनी बो जीत फिल्म की गीत।

0: हेलो
1: हेलो दीदी को राधे राधे। केसरी
0: राधे राधे, बोलिए आपका शुभ नाम।
1: सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से। जी
0: केसरी सिंह,
1: दीदी।
0: ओके, भोपाल से।
1: हाँ भोपाल के पास है बैरसिया, 40 किलोमीटर।
0: ओके ठीक है, बोलिए कौन सा गीत सुनना है आपको।
1: आज आप सुनवा दीजिएगा दीदी, मूवी का नाम है समाधि।
0: समाधि
1: जी
0: समाधि इस

0: फिर कौन सा गेट?
1: तेरी बेरी के नीचे। हाँ
0: ओके, वो तो नहीं है, मैं बता देती हूँ। बंगले के पीछे, जब
1: हाँ यही।
0: ये है ना,
1: हाँ
0: गाने का बोल ठीक से नहीं बोलेगा तो हम लोग भी थोड़ा तकलीफ हो जाता है ढूंढने में। ओके ठीक है, और किसी का नाम लेना है आपको?
1: जी, पहले आप सुनेंगे
0: जी बिल्कुल, थैंक यू।
1: और हमारे रामबाबू शर्मा जी हैं, गजराज लोधी जी, मांगीलाल चंदेल जी, भगवान सिंह परमार जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, लोकेन्द्र वर्मा जी और रमेश प्रजापति जी हैं, अमल जी और विमल जी हैं और भाई कुन मुंडा जी हैं और जितने भी लाइव सुन रहे हैं सबके लिए रहेगा दीदी।
0: ओके ठीक है, केसरी जी आपका गीत सुनिए और एंजॉय कीजिए। कॉल करने के लिए धन्यवाद,
1: राधे राधे।
0: वेलकम। होने लगा सा बिल्ला प्रोग्राम थे, एक बार दूसरा गीत दिया से लता मंगेशकर लगा वास्ते फिल्म से समाधि और इटू गीत तो पसंद करी कि ना। मिखल नोटे कॉल करी से भोपाल प्रा केशरी सिंह और तार प्रा एफएम ट्रैक पर लतार लगा कि सुमन दोस खान के डेडिकेट कर से और साथ साथे इतिया समय ते जिमान जन लोग भी ट्यून इन करी कि ना से अपनार खान की भी जुड़ाई कि ना डेडिकेट करी दिया से तो हुनिबो और एंजॉय करा होबो समाधि फिल्म की गीत।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार, बोलिए आपका शुभ नाम।
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: ओके राकेश जी, समय खत्म होने वाला है, जल्दी से बोल दीजिए कौन सा गीत सुनना है आपको।
1: तो जल्दी तो आप मुझे बेवफा सनम मूवी का गाना सुना दीजिएगा।
0: बेवफा सनम में कौन सा वाला गीत?
1: दिल तोड़ के हंसती हूँ मेरा,
0: दिल तोड़ के, ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा। ओके और नाम तो लेना चाहूंगी,
1: नाम फटाफट ले लेता हूँ।
0: ओके
1: सबसे पहले आपको गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ओके
1: पूर्ण वर्मा और अविनाश तेली, अमल और विमल और महाराष्ट्र तनुश्री और भगवान सिंह परमार और रमेश प्रजापति और तमाम सुनने वाले श्रोता है उनके लिए गाना डेडिकेट रहेगा क्योंकि टाइम कम है।
0: ओके ठीक है राकेश जी, गीत सुनिए और एंजॉय कीजिए और कॉल करने के लिए शुक्रिया। वेलकम हुनी रगा सब बेलाग प्रोग्राम सेस्ट डी एस ए बेवफा सनम फिल्म की गेज गए से उदित नारायण और इट गीत पसंद कर शिमला राकेश और तार पर एफ एम लगा किसान साठी विल नाम लिना डेडिकेट कर तो हुनीबो बेवफा सनम फिल्म की गीत।

नमस्कार, पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के संसदीय दल की बैठक आज संसद भवन के जीएमसी बालयोगी सभागार में हुई। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। उन्होंने नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। सिक्किम के नामची जिले में समरदुंग स्थित एनएचपीसी तीस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने के बारे में जानकारी मांगी है। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। औषधि महानियंत्रक ने टाकेडा बायो फार्मास्यूटिकल्स इंडिया द्वारा विकसित क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन को अनुमति प्रदान की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपजे में उत्तरी मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिलजानोवस्का दावकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए और 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। फ्रांस के सांसद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक सितंबर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से लागू करने पर सहमत हुए। बलूचिस्तान में मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि एक नाबालिग लड़की सहित 4 अन्य नागरिकों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जबरन लापता कर दिया है। जम्मू में कल तेज बारिश के कारण एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। पिछले 3 दिन में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। स्टे ट्यून्ड फॉर रेनबो हेल्पलाइन।

0: आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर समय है रेनबो हेल्पलाइन का। तो रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर से आपके साथ हूँ मैं बबीता त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे मॉनसून पर, मॉनसून के सीजन में किस तरह से अपने स्किन की देखभाल करें, किस तरह से अपने बालों की देखभाल करें। सबसे बड़ी समस्या होती है बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, और भी ज़्यादा समस्या कि स्किन क्यों चिपचिपी हो रही है। ऐसी तमाम समस्याएं आपकी पर्सनल हो सकती हैं, आपको लग सकता है कि मेरी स्किन में इस मौसम में कुछ कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है और वो गड़बड़ सिर्फ आपको पता है, और हो सकता है आपकी जो गड़बड़ है वो किसी और से भी रिलेट कर जाए तो उनको भी फ़ायदा हो जाए। कह क्यों रही हूँ, इसलिए कि आपको

0: लगाइए और पूछ डालिए। हमारे साथ हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट जुड़ चुकी है, नन अदर देन डॉक्टर भारती तनेजा। तो सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। तो भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो बिल्कुल तैयार है, इस मौसम में किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं वैसे तो आप ही बताएंगी बहुत अच्छे से, कस्टमर्स आपके पास ज्यादा आते होंगे इस तरह
1: जी
0: के।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। तो इस मौसम में जो भी प्रॉब्लम्स आपकी पर्सनल है, आप फोन उठाइए और नंबर घुमाइए, नंबर मैं बताती हूँ, जिससे आप डायरेक्टली डॉक्टर भारती से बात करेंगे और अपने सवाल पूछ डालेंगे। 2342-1080 ये एक नंबर है। एक नंबर और है 2342-1084, जिस पर आपको कॉल लगाना है और हमसे डायरेक्टली बात करनी है डॉक्टर भारती तनेजा जी से। आप सवाल पूछिए और जवाब अपना ले लीजिए, और साथ में आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर है 9868107070। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना है और भेज देना है अपने सवाल के साथ इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 9868107070। सुनते रहिए रेनबो हेल्पलाइन, आपके साथ हूं मैं बबीता त्रिपाठी, ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: आकाशवाणी रेनबो पर शो चल रहा है रेनबो हेल्पलाइन। आज हम बात कर रहे हैं मॉनसून सीजन में त्वचा और आंखों की देखभाल पर। हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो है डॉक्टर भारती तनेजा, स्टूडियो में मौजूद हैं। ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, आप सब जानते हैं, और ये नाम हम सब को बचपन से सुनने को मिलता आ रहा है तो खासकर मुझे, और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। और मैं जानती हूँ कि आप के पास हर चीज़ का घरेलू उपचार है कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती हैं और मॉनसून सीजन में खास तौर पर प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं स्किन की और हेयर की। तो आप कॉल उठाइए, फ़ोन उठाइए 2342-1080 या 2342-1084 पर कॉल करिए, या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भी अपना सवाल डॉक्टर भारती तनेजा से पूछ सकते हैं। 9868107070 ये है व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए नंबर। फिलहाल डॉक्टर भारती आपसे जानना चाहेंगे इस मौसम में खास तौर से किस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं स्किन में और हेयर में, और क्यों आती हैं?
1: बहुत सारी प्रॉब्लम स्किन में इस वक्त आती ही आती हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी है। स्किन में अगर बात करें तो आप देखिए स्किन के ऊपर पोर्स आपके जब खुले होते हैं, जब भी ह्यूमिडिटी होती है इससे पोर्स भी खुल जाते हैं, और इतनी गंदगी आपके देखिए पोल्यूशन इतना है, पोल्यूशन ह्यूमिडिटी की वजह से पसीना बहुत आता है, और जब पसीना आता है और पोर्स में जो मिट्टी है वो जम जाती है, उससे ब्लैकहेड्स बन जाते हैं, फिर वो एक्ने में तब्दील हो जाते हैं। तो एक्ने की समस्या जो है सबसे ज़्यादा इन दिनों में होती है। और बाल तो बालों के क्यूटिकल्स खुल जाते हैं और आपका वो एकदम जो बाल हैं वो रफ हो जाते हैं, बहुत फ्रीजी हो जाते हैं, और बारिश की वजह से जब भीग जाते हैं बाल तो और ख़राब हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इवन फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है पैरों में, तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं, तो एक एक करके सबको लेते रहते हैं।
0: जी बिल्कुल, और आपने कहा जिस तरह से तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, हाँ किसी भी पार्ट में आ सकती हैं स्किन के, किसी भी जगह पे बॉडी के किसी भी जगह पे किसी भी पार्ट में ये प्रॉब्लम आ सकती है। हाथ पैर पर खास तौर पर प्रॉब्लम्स आती है खुजली की, मैंने
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा एकदम।
0: ये क्यों होता है?
1: बारिश में हम लोग भीग के आते हैं ना जैसे, तो पैरों के अंदर पानी जो है वो रह जाता है, जैसे आपने शूज पहन लिए, चप्पल पहन ली, तो आपकी उंगलियां जो बिल्कुल टाइटली बंद हो गई है ना चप्पल के अंदर, तो वहां पे बारिश के, आप देखिए बारिश के अंदर जो पानी होता है ना, हमें लगता है कि ये पानी तो साफ है, लेकिन वो एटमोसफेयर से

0: बहुत सारा पोल्यूशन, बहुत सारे बैक्टीरिया लेके रहता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया पोल्यूशन रहता है ना, तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए खुजली ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम बारिश से भीग के आएँ तो हम लोग को लगता है अब बाल तो धुल गए, तो बाल तो, पर बालों के देखिए मिट्टी जो है ना आपके, पहले ग्रीस मिट्टी पहले से ही है, ऊपर से पानी पड़ा और बालों के अंदर एक लेयर बन गई मिट्टी की, तो वो गंदगी की लेयर बन जाती है और वहाँ पे आपके बैक्टीरिया पनपते हैं, वहाँ पे आपको डैंड्रफ शुरू हो जाती है, वहाँ पे आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। तो हर जगह पे उनको धोना ज़रूरी है, बाल अगर आप भीग गए हैं तो उनको वॉश कीजिए, शैम्पू कीजिए, शैम्पू कीजिए, बिल्कुल शैम्पू करके वॉश कर लीजिए ताकि आपके बाल दोबारा से एकदम क्लीन हो जाए। फेस है तो फेस को भी वॉश करना ज़रूरी है, जितना धूल मिट्टी है वो आपके फेस पे जम ना जाए, आप अच्छे से क्लीन कीजिए फेस को, ताकि अगर धूल मिट्टी जमी है और आपके पोर्स में जमने वाली है और एक्ने होने के चांसेस लेटर हैं तो पहले से ही साफ़ कर लीजिए ताकि आपके ब्लैकहेड्स ना बने। मैं तो कहूँगी फेस के लिए एक बार दिन में अगर हम स्क्रब कर लें, अदरवाइज ऑल्सो आई ऑलवेज फील, बहुत लोगों को रहता है अरे रोज़ रोज़ स्क्रब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है, रोज़ रोज़ स्क्रब नहीं करना चाहिए अगर हम स्क्रब को बहुत ज़्यादा देर तक करते हैं।
1: अच्छा।
0: अगर कुछ सेकंड्स के लिए, मैं नहाने के वक्त हमेशा एक स्क्रब इस्तेमाल करती हूँ कोई भी, मैं तो घर
1: के चावल के आटे और कच्चे दूध का
0: बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ मैं,
1: ऑलमोस्ट 25
0: हर्ब्स डालती हूँ।
1: okay.
0: और वो हर्ब्स, और आजकल तो मैं बहुत ज़्यादा उनको रिलीजियस देने के लिए, आपकी स्किन को और अच्छा ब्रीदिंग देने के लिए थोड़ी सी पीली सरसों और काले तिल भी डालती हूँ, गुलाब के फूल डालती हूँ,
1: हल्दी डालती हूँ। आपने नहीं बताया
0: तो ये सारी चीज़ें डाल के जब हम एक स्क्रब करते हैं, बट स्क्रब ऐसा नहीं कि स्क्रब लगा के बस स्क्रब करते जाएं, तो वो तो आपकी स्किन जो है ऊपर से ख़राब होने लग जाती है, तो बहुत ही हल्का स्क्रब करना है और कुछ सेकेंड्स के लिए, 5-10 सेकेंड मैक्सिमम। अगर आप हर रोज़ कर लें, बिलीव मी इतने साल हो गए, मैंने कभी जब फेशियल कराते हैं ना लोग ब्लैकहेड्स निकलवाते हैं, आई नेवर गॉन फॉर दैट, मैं कभी ब्लैकहेड्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, ब्लैकहेड्स होने का चांस ही नहीं
1: होता है,
0: क्योंकि मिट्टी धूल जो आपके स्किन के अंदर ऑयल तो निकल रहा है ना आपके पोर्स से, तो उसके अंदर जब मिट्टी और धूल जम जाती है तो ब्लैकहेड्स बनते हैं, और अगर ब्लैकहेड्स को ना निकाला जाए तो वो एक्ने में तब्दील हो जाते हैं क्योंकि उसमें बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं। और ब्लैकहेड ही ना बनने देना, आपने हर रोज हल्का सा स्क्रब कर लिया, मामूली सा स्क्रब कर लीजिए, आप चाहे तो सिर्फ पीली सरसों डाल के भी स्क्रब कर सकते हैं।
1: पीली सरसों से का नया कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया, क्यों?
0: पीली सरसों गोल है ना, गोल से आपकी स्किन खराब नहीं होती, या आप ये जो होता है खसखस डाल लीजिए,
1: उसको दरदरा पीसना नहीं है ऐसे ही
0: ना, आप सिर्फ थोड़ा सा चंदन पाउडर, थोड़ी मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा उसमें क्योरिन पाउडर डालें तो बहुत अच्छी बात है, और उसके अंदर नहीं तो थोड़ा सा खसखस भी डाल लीजिए, ये कुछ भी नहीं किया ना तो आपको ये बहुत ही हल्का और ईजिली बनने वाला स्क्रब है। अब ये स्क्रब आप लगाएंगे तो आपके जो गोल है कभी भी आपके स्किन को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो आपने जरा सा स्क्रब किया, जितनी भी मिट्टी विट्टी है, जितना भी धूल है, वो सब निकल जाएगी, है ना, आपकी स्किन साफ हो जाएगी, ब्लैक हेड निकालने की जरूरत ही नहीं पड़नी, और ब्लैक हेड नहीं होंगे तो एक्ने होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
1: सारे पार्लर्स बंद होने वाले हैं क्योंकि आप रेगुलरली बहुत अच्छे अच्छे हम लोग को सजेशंस देते
0: हैं, पर लोग सुनते कहाँ हैं, सुनते हैं पर फॉलो नहीं करते,
1: फॉलो नहीं करते कुछ दिन तक,
0: लोगों को लगता है कौन इतनी मेहनत करेगा, बाजार से स्क्रब उठा लो, या फिर कुछ लोग तो बोलते हैं
1: ज्यादा फैंसी लगता है,
0: कुछ लोगों को लगता है कि ये भगवान कौन रोज करेगा काम, तो काम ही नहीं, वो इतना एक देखिए कुछ सेकेंड्स आपने स्क्रब बनाया स्क्रब लिया, आपके जहाँ आप नहा रहे हैं साबुन रखा है वहीं स्क्रब रख लीजिए, तो फेस पे स्क्रब कीजिए, बॉडी पे साबुन लगा लीजिए, हाउ डज इट मैटर, हमें इतना सा टाइम लगता है मतलब कुछ सेकंड्स, तो वो सेकंड्स दे दें तो आपकी स्किन देखिए कितनी खूबसूरत बन जाएगी।
1: और मैम खासतौर पर मानसून सीजन की अगर हम बात कर रहे थे तो इस टाइम पे बच्चों के में हम खासतौर से देखते हैं उनकी स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है, बाहर कई बार वो नहीं भी जा रहे हैं तो भी उनकी स्किन में कुछ कुछ एलर्जी हो ही जाती है, चाहे वो छोटे छोटे दानों की या कई बार बड़े बड़े दाने भी हो जाते हैं,
0: वो इसलिए है कि बाहर देखिए इस वक्त बाहर ना भी जाएं, जैसे ही बारिश का मौसम होता है तो आपके बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो आपके घर के अंदर भी आ जाते हैं, और वो पनपना उनको आसान हो जाता है बिकॉज ह्यूमिडिटी है, तो जहाँ भी ह्यूमिडिटी होगी आपके बैक्टीरिया पनपेंगे, और जहाँ बैक्टीरिया पनपेंगे कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, और इस वक्त मच्छर भी बहुत सारे हो जाते हैं, वो काटते हैं तो उनसे भी आपको खुजली होने शुरू हो जाती है, परेशानी शुरू हो जाती है, तरह तरह के मच्छर हैं और बहुत ही बारीक मच्छर हैं तो वो भी काट जाते हैं, तो इस वजह से भी खुजली होने शुरू हो जाती है।
1: बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हो गए और मुझे लग रहा है कि इन सबको लेना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।

एक और अच्छा सा गाना सुन के लौट कर आते हैं और फिर आप सबके मैसेजेस लेने शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, तब तक अभी तक आपने पर्सनल अपनी जो समस्या है वो नहीं लिख कर भेजा है, तो फटाफट लिखिए ना। स्किन और हेयर से संबंधित सबकी कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर होती है। आपकी किस तरह की स्किन है, इस सीज़न में किस तरह से रिएक्ट कर रही है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, फटाफट लिख कर भेजिए और उसका समाधान पाइए डॉक्टर भारती तनेजा से, जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। और फ़ोन मिलाने के लिए आपको क्या करना है, 2342108 डायल करना है या 2342108 आप चाहें तो सिंपली व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपना सवाल लिखकर भेज दीजिए, जरूर शामिल होगा। 9868107070।

0: join the mega plantation drive. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
1: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।

0: ये है आकाशवाणी रेनबो और रेनबो हेल्पलाइन चल रहा है शो, जिसमें कि आज बात कर रहे हैं मॉनसून सीजन में स्किन और हेयर की किस तरह से केयर करनी चाहिए। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर भारती तनेजा हैं, जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आप सबके सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपने अभी तक अपना सवाल नहीं पूछा है तो कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए अपने सवाल लिखकर। आपको कॉल करने के लिए नंबर चाहिए होगा तो बता देती हूँ, 2342108 या 2342108 जिस पर आपको कॉल करके सवाल डायरेक्टली करना है, या आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए और वो ज़रूर शामिल होगा। 9868107070 ये नंबर है व्हाट्सएप मैसेज के लिए, 9868107070। आपके साथ हूँ मैं बबिता त्रिपाठी। एक सवाल लेते हैं मैम अनीता का, जो दिल्ली से आया है। शी इज़ 46 ईयर्स ओल्ड और इन्होंने लिखा है कि इज़ इट ओके टू अप्लाई द फॉलोइंग टू पैक्स मिक्सड विद मिल्क और ऑन अल्टरनेट डेज, 1 मुल्तानी मिट्टी, 2 हल्दी उपटन, प्लीज एडवाइस।
1: दोनों को मिक्स करने की बात कर रही
0: हैं। हाँ, इन्होंने कहा कि ये पैक लेती हैं अल्टरनेट डेज पे मिक्स करके मिल्क के साथ।
1: ये दोनों पैक अलग अलग ले रही हैं।
0: हाँ,
1: एक्चुअली मुल्तानी मिट्टी और दूसरी चीज क्या है,
0: हल्दी,
1: दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं। मुल्तानी मिट्टी भी बहुत अच्छी है, हल्दी उपटन भी बहुत अच्छा है। दोनों को मिक्स करना चाहिए, कर सकते हैं, बल्कि बेटर है कि मिक्स करें, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी अकेली जो है, कोई उन्होंने पैक में आई डोंट नो क्या क्या डाला होगा, ये मार्केट से बना हुआ पैक खरीद रही है, और हल्दी उपटन भी डेफिनेटली ये मार्केट से खरीद रही है, तो दोनों को मिक्स कर लेंगे तो इट विल बी बेटर। दोनों चीजें मिक्स होना बेटर है।
0: ओके, लेकिन मैम कई बार होता है कि त्वचा की किस तरह की टाइप है, ये भी
1: बिल्कुल सही कहा आपने। मुल्तानी मिट्टी और हल्दी,
0: कई बार मैंने सुना है कि मुल्तानी मिट्टी लगाने से स्किन में रैशेज या दाने हो गए। हाँ, वो क्यों हुआ?
1: नहीं, दाने नहीं हो सकते, मुल्तानी मिट्टी से कभी दाने नहीं होते।
0: अच्छा।
1: आपने बीच में मिलाया क्या, मान लीजिए एकदम आपने बहुत सारा नींबू डाल दीजिए तो नींबू आपके फेस को सूट नहीं किया, तो वो हो सकते हैं। लेकिन आपको देखने, दोनों चीजें पाउडर है, हल्दी और मुल्तानी मिट्टी दोनों पाउडर है। आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आपको स्किन टोनर इसमें मिक्स कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: आप गुलाब जल मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप दूध मिक्स कीजिए बनाने के लिए। तो जो पैक बना रहे हैं ना, उसमें जो आप लिक्विड डाल रहे हैं वो आपने स्किन के अनुसार डाल लीजिए, तो मुल्तानी मिट्टी दोनों के लिए काम आएगी, और हल्दी तो वैसे ही एंटीसेप्टिक है, इससे कोई खराबी होने के चांसेस अदरवाइज ही नहीं है।
0: ओके, दही कब डालते हैं?
1: दही हमेशा ऑयली स्किन के लिए डाला जाता है, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो दूध डाला जाता है।
0: ओके, ये ज्ञान बहुत जरूरी है।
1: हाँ, बहुत लोग सिर्फ दही लगाते हैं, उनको ये पता नहीं होता, दही इज ओनली फॉर, जनरली फॉर ऑयली स्किन, और दूध इज गुड फॉर ड्राई स्किन।
0: हाँ, तो ये अब बालों पर आ जाते हैं, स्किन और हेयर दोनों की बात हो रही है। तो एक सवाल आ गया है पैंथर तोमर का, इन्होंने बहुत सारे सवाल किए हैं वैसे तो, लेकिन इन्होंने कहा है कि मॉनसून के मौसम में डैंड्रफ और स्कैल्प इन्फेक्शंस बहुत सारे होते हैं, इसके कारण क्या है और उपाय क्या है, पहला सवाल है। पहले इसकी
1: एक करके लेते हैं।
0: हाँ।
1: सबसे इम्पोर्टेंट है कि डैंड्रफ क्यों हो जाती है। जब हम बाल गीले होते हैं ना हमारे, हम बारिश से होकर आए हैं और गीले बालों को मैंने बताया कि अगर हम धोते नहीं हैं तो मिट्टी धूल बीच में ही रह जाती है, ऊपर से बल्कि पानी ने उसको और दबा दिया। ऑयल,
0: हाँ।
1: वैसे भी इन दिनों में ह्यूमिडिटी में ऑयल बहुत ज्यादा निकलता है, ऑयल
0: हाँ।
1: निकल नहीं पाता बाहर, आपके पोर्स बंद हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ज्यादातर बालों में डैंड्रफ हो जाती है। तो डैंड्रफ अगर हो गई है तो आपको एक तो वॉश ज्यादा करना है, आप बाहर से आए तो 100% वॉश करना ही करना है, गीले हो गए तो वॉश करना ही करना है, अदरवाइज भी हफ्ते में 3 बार वॉश कर लेना चाहिए।
0: अच्छा।
1: और किसी अच्छे शैम्पू से वॉश कर लें, और उसके बाद कंडीशनिंग जरूर करें। कंडीशनर लगाते वक्त स्कैल्प के ऊपर नहीं लगाना, वन हैज टू वेरी वेरी केयरफुल कि स्कैल्प के ऊपर नहीं लगाना, आपको बालों के अंदर कंडीशनर लगाना है।
0: अच्छा।
1: और उसको लगाने के बाद ना एक कॉम लेके उसको कॉम कर दीजिए, 2-3 मिनट इंतजार कीजिए और फिर उसको वॉश कर दीजिए। तो ये कंडीशनर जो है आपके बालों को कंडीशन कर देगा, अगर बाजार में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाल धोने के बाद अगर आप चाहें सिर्फ स्टाइलिंग करनी है।

0: शीशा लगा ले तो हमेशा ही अच्छा रहता है।
1: हाँ
0: स्टाइलिंग के लिए आपके घर में इतनी चीज़ें हैं,
1: क्या
0: आप बाहर जाएं आपके गार्डन में जरूर आपको मिल जाएगा एलोवेरा, है
1: हाँ
0: ना। एलोवेरा को आप धोइए, उसको टेढ़ा कीजिए, नीचे से टेढ़ा काटिए, कुछ देर रख दीजिए, उससे पीला पीला एक लिक्विड निकलेगा, उसको निकल जाने दीजिए, उसके अंदर का जेल लीजिए, उसको अच्छे से मिक्सी में पीजिए, वो आपको पीस लीजिए मिक्सी में, आपके लिए इतना अच्छा वो
1: कंडीशनर है।
0: कंडीशनर बन जाएगा। और बालों के फ्रिजी जो हो रहे हैं ना, वो उसको फ्रिजी कम फ्रिजीनेस कम करके स्टाइल करने के
1: उसको
0: हेल्प
1: लगाना
0: करेंगे।
1: कितनी देर है मैम?
0: वो लगा के ही रखना है।
1: अच्छा वो शैम्पू नहीं उसके बाद धोना नहीं
0: दो
1: उसको?
0: दो बातें हैं।
1: हाँ
0: हम अगर तो बालों के कोई प्रॉब्लम है, गिर रहे हैं, उसके लिए लगा रहे हैं, तो स्कैल्प पे लगाना है
1: अच्छा,
0: और उसको रखना है और
1: वो
0: सुबह धो
1: गिरने के
0: सकते
1: लिए
0: हैं।
1: भी फायदेमंद होते हैं?
0: हाँ, गिरने के लिए भी फायदेमंद
1: अच्छा
0: है। और अगर सिर्फ आपको फ्रिजीनेस कम करनी है तो उसमें ज़रा सा, अगर बहुत ही ज़्यादा फ्रिजीनेस है तो उसमें ज़रा सा ग्लिसरीन मिक्स करके आप
1: अच्छा,
0: बालों में लगा लीजिए, आपके बालों की फ्रिजीनेस कम हो जाएगी।
1: उसको
0: क्यों?
1: छोड़ देना है, उसको वॉश नहीं
0: हाँ
1: करना।
0: हाँ वो स्टाइलिंग के लिए काम आ जाएगा।
1: ओ
0: हाँ, घर में आपके अलसी होगी, आजकल इतने हर कोई फ्लैक्स सीड रखते हैं, खाते
1: हाँ
0: हैं हम लोग सब लोग, हम लोग आजकल फ्लैक्स सीड्स खाते हैं। अभी तो पुरानी चीज़ें, देखिए मुझे याद
1: वापस
0: है
1: आ रही है वो।
0: हमारी दादी जो है वो हमेशा बनाती थी फ्लैक्स सीड्स के लड्डू बनाया करती थी,
1: हाँ
0: तो वो खिलाती थी, तो अभी तो फ्लैक्स सीड्स हम हर रोज़ ही खाते हैं। तो फ्लैक्स सीड थोड़े से लीजिए, उनको बॉयल कर लीजिए, पीस के बॉयल कर लेंगे तो जल्दी से उसका गुदा निकल जाएगा, उसमें से थोड़ी सी गम जैसा एक निकलता है, तो उसका जो पल्प जो है निकलेगा उस छान लीजिए, तो उसका जो एकदम जो गूदा निकलेगा छानने के बाद, उसको आप स्टाइलिंग के लिए काम कीजिए। कर्ली वाला है जरा सा आप वो लगा के, अलसी का जो गूदा है उसको जेल निकलता है, मैं देखते रहते
1: जेल
0: जेल बन जाता
1: हाँ
0: है, उस जेल को अपने बालों में लगाइए और नीचे से बालों को पकड़ के ऊपर को स्क्रंच स्क्रंच कर दीजिए, तो ऐसे बालों का कर्ल, अगर कर्ली हेयर है तो सुंदर कर्ल हो जाएंगे, तो स्टाइलिंग का काम हो गया, तो आपको स्टाइलिंग जेल लेने की जरूरत ही नहीं है।
1: उसके बाद उसको वॉश नहीं करें, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आप बता रही हैं कि वॉश नहीं करना है, उसको
0: नहीं,
1: लगा के रखना
0: ये
1: है।
0: स्टाइलिंग के लिए बात कर रहे हैं,
1: ओके
0: स्टाइलिंग के लिए बालों में लगाना,
1: कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं
0: नॉट एट
1: होती
0: ऑल, बल्कि नॉर्मल आप बाजार से जो खरीदते हैं। देखिए कर्लिंग के लिए जो स्टाइलिंग जेल्स होते हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव
1: और मे बी हार्मफुल ऑल्सो।
0: आजकल तो बहुत ध्यान दिया जाता है मार्केट से, आज
1: हाँ
0: गवर्नमेंट भी बहुत ध्यान दे रही है कि आप क्या क्या चीज़ें यूज कर रहे हैं, तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी घर में बनाओ यूज करें तो सस्ता सुंदर टिकाऊ।
1: हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, क्या बारिश के पानी में भीगने से बाल खराब होते हैं?
0: देखिए बाल खराब होते हैं अगर आप उन्हीं के अंदर आपने रखे रखा, उनको
1: वॉश नहीं किया तो। मॉनसून में अचानक बाल झड़ना क्यों बढ़ जाता है?
0: क्योंकि हम लोग वही वही बात है कि ध्यान नहीं देते, बालों को वॉश नहीं करते। इन दिनों में वॉशिंग ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि लगता है ना कि इन दिनों में तो ह्यूमिडिटी इतनी जरूरत है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, बाल तो मेरे सही लग रहे हैं,
1: हाँ।
0: लेकिन इन दिनों में आपको हफ्ते में 3 बार वॉश करना ज़रूरी है।
1: एक सवाल इन्होंने और भी लिखा है, लेकिन वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से आप ये सब बातें बता चुकी हैं, इस मौसम में घमोरियाँ और एक्जिमा क्यों बढ़ती है, इसके बचाव के कारण है, आपने बता दिया था कि इन्फेक्शन होते हैं, आपको किस तरह से उससे बचना है।
0: जी
1: और भी बहुत सारे सवाल, बड़े लंबे लंबे सवाल आ रहे हैं, मैं उनको पढ़ूंगी आराम से तभी ले पाऊंगी। आप क्रिस्प सवाल छोटा सा पूछिए और उसका जवाब आप जानिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो सवाल शामिल होने के चांसेस तभी होते हैं जब क्लियर हो सब कुछ। मैम कम उम्र में सिर के बालों का पक जाना और दाढ़ी के बालों का पक जाना या सफ़ेद हो जाना, इसका उपाय बताइए। अजय कुमार
0: आजकल देखिए
1: छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं जी,
0: पहले बहुत जब बाल सफ़ेद होते थे बुढ़े होने की बात होती थी,
1: हाँ
0: आजकल जमाने में क्या बच्चों के बाल सफ़ेद होने लग गए हैं। कुछ तो हमारे फ़र्क आता जा रहा है, हमारे खान पान में भी फ़र्क आता जा रहा है और कुछ एटमोसफेयर में फ़र्क आता जा रहा है, हार्मोनल प्रॉब्लम में, कई हार्मोनल प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनकी वजह से बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो आजकल बहुत जल्दी जल्दी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, फिर हम केमिकल्स लगाते हैं तो बाल सफ़ेद होते हैं, कुछ बाहर की पॉल्यूशन जो है इतनी ज़्यादा है, पोल्यूशन में इतने तरह के कहना चाहिए एलिमेंट्स मिले हुए हैं जो कि आपके बालों को सफ़ेद कर रहे हैं, तो बालों के सफ़ेद होने के बहुत सारे चांसेस हैं। अगर आपने बात करनी हो तो फिर आपको बहुत सारा चेकअप कराने की ज़रूरत पड़ती है कि बाल क्यों जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, तो उनको फिर जब सफ़ेद हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा हीना लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके बालों को फ़ायदा हो सकता है।
1: इसी बीच एक सवाल आया है, उनको लेते हैं। हेलो
2: हेलो मैम, गुड
1: आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून
2: जी, मैं दिल्ली से लुबना बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी बोलिए बोलिए
2: जी, मेरा सवाल है। नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।
2: जी, मेरा सवाल ये है कि माय एज इज 34 और मेरे चेहरे पे ओपन पोर्स

0: दिखाई देते हैं अब, तो वो थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए एक होम रेमेडी। और मेरा एक और सवाल है रिलेटेड टू माय हेयर
1: एक एक करके
0: मेरा
1: नहीं,
0: ना
1: पहले पहले एक एक करके नहीं।
2: हाँ
1: आपका जो जो से पहला है ओपन पोर्स के लिए, तो घर में आपके पता है आपके किचन में बहुत ही बढ़िया चीज़ पड़ी हुई है, डू यू नो, वो है टोमेटो। तो आप टोमेटो को बीच में से आधा कर लीजिए और दो हिस्से कर लीजिए मतलब, और दोनों हिस्सों को लेके अपने फेस के ऊपर टोमेटो का जूस लगाना शुरू कीजिए, और उसको लगा के पूरे फेस पे 10 मिनट 15 मिनट इंतज़ार कीजिए, फिर वॉश कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो कि आपके घर में ही रखी है। आप चाहे तो एलोवेरा और टोमेटो जूस को मिक्स करके भी लगा सकते हैं, उससे आपकी स्किन में सॉफ्टनेस भी आ जाएगी। कभी कभी टोमेटो जूस जो है ना खट्टा होता है ना, तो थोड़ा सॉफ्टनेस कम होने के चांसेस है। दोनों को मिला के लगाएंगे तो सॉफ्टनेस
2: शहद भी
1: भी
2: मिला
1: रहेगी,
2: सकती हूँ क्या मैं?
1: शहद भी मिला सकते हैं, ग्लिसरिन भी मिला सकते हैं।
2: ओके
1: तो इनसे आप लगाइए, टोमेटो से आपके डेफिनेटली ओपन पोर्स कम होंगे।
2: ओके ग्रेट। दूसरा सवाल
0: जी मैम, माय सेकंड क्वेश्चन इज कि जो मेरा हेयर है स्पेशली जो फ्रंट एरिया है, जो फीमेल पैटर्न जो बाल्डनेस होता है उस तरफ बढ़ा, क्योंकि मुझे एक्चुअल में मेडिकल इशू है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं एक मतलब मेडिकेशन, मेरी मेडिसिन तो चल रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसी क्या होम रेमेडी करी जाए कि वो ज्यादा इफेक्टिव हो, के दवाइयों के साथ साथ वो भी चले। मैं होम्योपैथी ले रही हूँ।
1: होम्योपैथिक मेडिसिन ले रही है तो वैसे भी उसके साइड इफेक्ट थोड़े कम होते हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात रहती है। लेकिन अगर आपके बाल क्या है, बालों को खींच के बंद करते हैं क्या, आप चोटी बना दिए हैं या खींच के बंद करते हैं?
0: नहीं, मैं बन बांधती हूँ
1: हाँ एक ही बात
0: ज्यादा।
1: है, वो आप खींचते हैं बालों को, बालों को खींचना बंद कीजिए। अगले बालों को स्पेशली थोड़ा सा सॉफ्ट रहने दीजिए, चाहे कटवा के आप उसको आगे से छोटा भी रख सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो थोड़ा सा सॉफ्ट रखिए बालों को। जैसे हम खींचते हैं तो बाल आगे से जाने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, आप मसाज किया कीजिए हफ्ते में एक बार ज़रूर, कोई ऑयल मसाज कर सकते हैं, और अगर बाल ऑयली है तो हेयर टॉनिक, कोई भी अच्छा सा हेयर टॉनिक ले लीजिए। आजकल इतने अच्छे हेयर टॉनिक्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन भी होती हैं, वो भी डालते हैं। आप होम्योपैथिक मेडिसिन जिससे ले रहे हैं ना थायराइड के लिए, उनको बोलिए हमारे पास ना होम्योपैथिक में बड़ी अच्छी मेडिसिन होती है जो हम खाएं और लगाएं, दोनों करने से हमारे बाल जो हैं वो काफ़ी हद तक वापस भी आ जाते हैं। अभी तो आपके बहुत ज़्यादा दूर गए नहीं है ना, अभी अभी तो आपकी उम्र ही कम है, तो आपके बाल अभी अभी अभी फॉलिकल्स होंगे, तो उनको आप ज़रूर फॉलिकल्स को दोबारा से ला सकती हैं अगर आप मसाज करें और साथ में आप अपना मेडिसिन खाएं और लगाएं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो किसी पार्लर में जाके ओजोन ट्रीटमेंट एक मिलता है, तो ओजोन से या लेज़र से अपनी क्या है, ओजोन या लेज़र से जो आपके बाल चले गए ना, फॉलिकल्स चले गए हैं वो वापस आ जाते हैं। अगर अभी थोड़ी देर हुए, जैसे 25 साल तो नहीं हुए ना गए हुए, कुछ साल हुए या 2-4 साल ही होंगे, तो आ सकते हैं। और एक
2: उसकी कोई साइड इफेक्ट्स
1: नहीं, नहीं नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। और एक बात और बहुत
2: क्योंकि हम लोग ना कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले सबसे पहले सवाल
1: जी
2: ये
1: जी
2: रहता है कि कहीं कुछ साइड इफेक्ट ना हो
1: सच
2: जाए।
1: सच बात है। और एक ना आजकल कॉपर पेप्टाइड वाले हेयर टॉनिक मिलते हैं जिनमें कॉपर पेप्टाइड रहता है, तो कॉपर पेप्टाइड जो है आपके जो फॉलिकल्स हैं उनको भी वापस लेके आता है, और जो आपके और अभी बाल हैं उनको भी मोटा कर देते हैं, तो आपके जो बाल हैं वो मोटे हो जाएंगे तो खूबसूरत लगने लग जाएंगे, ज़्यादा लगने लग जाएंगे।
2: एक और सवाल इस बीच आया है, उनसे बात करते हैं। हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी कौन बोल रहे हैं?
3: जी मैं बात कर रहा हूँ, मेरा प्यार बार नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार,
3: मेरा सवाल मैम ये है कि चेचक के दाग रहते हैं चेहरे पे, ये किसी सर्जरी वगैरह से ठीक हो सकते हैं?
1: फिर से बोले क्या है आपके?
2: चेचक के दाग सर,
1: चेचक के दाग
2: सर्जरी से ठीक हो सकते हैं?
1: अरे चेचक के दाग के लिए सर्जरी तो बहुत ही मुश्किल काम है, पूरी स्किन ही आपकी चेंज करनी पड़ेगी, बहुत दिक्कत वाली बात है और लंबा काम है। आजकल अगर आपने चेचक के दाग आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आप कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, ऊपर से ही हम लोग कुछ ट्रीटमेंट्स कर देते हैं। कुछ मशीन्स हैं हमारे पास, लेज़र है, कुछ तरह के मास्क होते हैं, कुछ तरह की पील्स होती हैं, पूरा बताना तो इस वक्त मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे पील्स हैं, बहुत सारे मास्क हैं और बहुत सारी मशीन्स हैं जिनका हम इसका कार्बन फेशियल होता है, कार्बन की मशीन होती है, उससे आपके जो स्किन है उसको काफ़ी हद तक रिजुविनेट भी किया जा सकता है और ऊपर से पील भी किया जा सकता है, तो उस तरह के ट्रीटमेंट के लिए जाइए। अगर आप सर्जरी की सोचेंगे ना, तो पूरी स्किन आपको कहीं और से आपकी बॉडी से उठा के फेस पे लगानी पड़ेगी और मार्क्स भी होंगे, ये चिकन पॉक्स मार्क्स के लिए सही नहीं है सर्जरी।
2: ओके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ आप सब फायदा उठाइए क्योंकि समय जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा सवाल

0: स्किन केयर पर बात कर रहे हैं, हेयर केयर पर बात कर रहे हैं, तो सवाल तो बहुत सारे आने ही हैं इस सीजन में, प्रॉब्लम्स जो बढ़ जाती हैं। डॉक्टर भारती तरेचा जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, हमारे बीच हैं। आप सबके मैसेजेस मैं शामिल करती हूँ जो लगातार आ रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि सारे मैसेजेस शामिल होने चाहिए। अभी मुक्ता का मैसेज मुझे दिख रहा है, बोटॉक्स केराटिन विच इज़ गुड, आई हैव कर्ली एंड फ्रीजी हेयर्स, क्या करें?
1: ये ना एक्चुअली क्या है, बोटॉक्स एंड केराटिन दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ। केराटिन अगर इनके फ्रीजी बाल हैं तो उसके लिए अगर इनको स्ट्रेट करना है तो थोड़ा सा बोटॉक्स के लिए जा सकते हैं, लेकिन अच्छा। अगर केराटिन अगर उनके बालों में रफनेस है और बाल मतलब उनके बालों में जान नहीं है तो केराटिन करवाएं। केराटिन से बाल स्ट्रेट नहीं होते हैं, बोटॉक्स से बाल सॉफ्ट बहुत शाइनी होते हैं, लेकिन केराटिन से शाइन को ज्यादा ये नहीं मिलेगा, लेकिन उनको खाना मिलेगा। बाल बने हैं केराटिन के, तो जब हमारा केराटिन कम हो जाता है तो उसके अंदर केराटिन को हम फिल करना चाहते हैं तो केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं, तो अच्छा। अंदर जाके बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बालों को बेटर करता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनको क्या चाहिए, दोनों ही अच्छी हैं। केराटिन भी करा सकते हैं, बोटॉक्स भी करा सकते हैं। बालों को खाना अच्छे से भरपूर देना है तो केराटिन करा लें, और शाइन देना है तो बोटॉक्स करा लें।
0: ओके, बॉडी में इचिंग होती है बहुत, उसका क्या करना है? प्रमिला कर्नाटका से बोल रही हैं। वैसे इचिंग की हम बात कर रहे थे, बट क्या कर सकते हैं ये बात करते हैं।
1: इचिंग होती है तो इनको एक्चुअली स्पेशली मानसून सीजन में अगर दो बार नहा लें पूरी बॉडी अच्छा। के बाद है तो एक तो दो बार नहाए तो उसको अपने आप को ज़्यादा फ्रेश रखें, और फिर जो जो इनके

0: पार्ट्स है ना जो अंदर, जैसे अंडर आर्म्स है ना, जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा पाउडर लगा के रखें, तो उससे इचिंग कम होगी। वो नहीं पार्ट्स में ज़्यादा होती है जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है, तो पसीने से बचना ज़रूरी है। आप चाहे तो अपने नहाने के पानी में संतरे के छिलके, आजकल संतरा तो खैर कम मिल रहा है, गुलाब के फूल ले सकती हैं,
1: अच्छा
0: जैस्मिन के फ्लावर्स ले सकती हैं, जो भी फूल मिल जाते हैं इनके गार्डन में जो फूल लगे हैं उनको भी ले सकती हैं, तो उनको डाल के रखें रात को, सुबह उस पानी से नहा लें। आजकल तो गर्म पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उस
1: ओके
0: पानी से नहा सकती हैं, उससे भी इचिंग कम होगी, और पाउडर लगा के रखें तो इचिंग कम होगी।
1: नमस्कार मैम, हाउ टू मेक द थंब राइट लेफ्ट लेग स्किन सॉफ्ट फ्रॉम डाउन, इट हैज क्रैक्स ड्यू टू ड्राइनेस, प्लीज सजेस्ट सम होम रेमेडी। खुशबू रोहिणी राय
0: समझ
1: है,
0: नहीं
1: ये
0: आई है।
1: शुक्रिया से मुझे लग रहा है ये इन्होंने ये पूछना चाहा है कि थम के नीचे की स्किन जो है उनकी, उसको सॉफ्ट करना है, उसमें क्रैक्स आ गए हैं कई बार
0: हाँ,
1: थम में, ऐसा होता
0: हाँ
1: है
0: पैरों में
1: स्किन।
0: कभी कभी, कभी कभी देखिए सर्दियों में लोगों में क्रैक आते हैं, कभी कभी गर्मियों में भी क्रैक आ जाते हैं, और उसकी वजह भी ये है कि जो सफाई नहीं रखते हैं, ज़्यादातर उन्हीं के क्रैक्स आते हैं। तो अगर क्रैक्स इनके आ रहे हैं, पहली बार तो पेडिक्योर कराएं, खुद भी घर में पेडिक्योर कर सकती हैं, थोड़ा सा पानी में नमक और कोई भी सोप डाल के थोड़ी देर के लिए पैरों को भिगो के रखें, और जब सॉफ्ट हो जाए तो इनको, क्योंकि क्रैक्स है तो बहुत सॉफ्टली उनको स्क्रब करना है। और फिर घरेलू इलाज बताती हूँ बहुत ही अच्छा इनके लिए, जिनके क्रैक्स हैं, घर में मोमबत्तियाँ तो पड़ी होती हैं, टूटी फूटी मोमबत्तियाँ जो है उनको भी संभाल के रखना चाहिए इसी काम के लिए। तो टूटी फूटी मोमबत्ती या कोई भी मोमबत्ती ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल, एक कटोरी में मोमबत्ती के छोटे छोटे पीसेस डाल दीजिए, थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए, हल्का गर्म कीजिए, जैसे ही गर्म करेंगे तो वो तेल में जो वैक्स है वो पिघल जाएगी, उन दोनों को अच्छे से चम्मच से मिक्स करें, और अपने हल्का गर्म होने पे, बहुत गर्म नहीं लेकिन गर्म को ही अपने क्रैक्स में डाल लीजिए, और ये रात को वॉश करने के बाद करें, और फिर पैरों को अगर हो सके तो कोई सॉक्स पहन के सो जाएं, बस कुछ ही दिन करेंगे तो इनके ठीक हो जाएंगे।
1: वाह, तो ये छोटी छोटी जो रेमेडीज हैं इसी से इंस्पायर हो रहे हैं लोग और हर चीज़ की रेमेडी पूछ रहे हैं। देखिए
0: अच्छी बात है।
1: अभी पूछा, मेरा सवाल है कि 4 साल का मेरा बेटा है, उसका कलर बहुत डार्क हो जाता है, टैनिंग के लिए कोई रेमेडी बता दीजिए, नाम नहीं लिखा लेकिन ये सभी बच्चों के जो खेलने जाते हैं बाहर उनके लिए होता है सबके साथ।
0: वैसे मैं पता क्या, मैं अपनी बेटी के साथ मैंने हमेशा किया है इसलिए मैं कह सकती हूँ।
1: अच्छा
0: हम इसमें आप थोड़ा सा घरेलू एक उपटन बना लें, प्यारा सा, बिल्कुल सॉफ्ट
1: अच्छा।
0: सा, और उसी से मसाज करके नहला दें बच्चे को, तो आप रंग जो है ना काफी हद तक साफ हो जाता है। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है।
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
0: इसके लिए घर में जितनी भी आपके पास दालें हैं उन सारी दालों को पीस लीजिए, हम 4-5 दालें जितनी भी यूज़ करें, उड़द की, मूंग की, अरहर की, और फिर उतना ही चावल ले लीजिए, तो
1: अच्छा
0: सारी चीज़ों को इक्वली लेके इनको पीस डालिए, और जितना आपका मिक्सचर बना है उतना ही आपने चंदन पाउडर डालना है, और उतना ही उसमें मुल्तानी मिट्टी डालनी है।
1: ओके
0: तो तीनों
1: हर
0: चीज
1: स्किन के लिए,
0: हर स्किन के लिए,
1: ठीक
0: अभी
1: है।
0: मैं बाद में बताऊंगी ऑयली और ड्राई के लिए, तो
1: अच्छा
0: पहले पाउडर बन रहा है,
1: हाँ।
0: उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, थोड़े से गुलाब के फूल डाल लीजिए, तो ये आपका स्क्रब बन गया। आप चाहें तो इसमें बच्चों के लिए ना बारीक पीसिएगा, बहुत दरदरा नहीं होना चाहिए, और पीस नहीं तो बच्चों के लिए आप सिर्फ, सबसे अच्छा यही है जैसे मैंने पहले बताया कि चंदन पाउडर ले लीजिए, मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, केयरन पाउडर ले लीजिए, उसके अंदर सिर्फ खसखस डाल लीजिए,
1: अच्छा
0: या फिर पीली सरसों डाल लीजिए,
1: कितना
0: थोड़ा सा ही डालेंगे जिससे कि वो
1: पीस
0: दर्द,
1: कर
0: पीसना नहीं, ऐसी खसखस बहुत पतली होती है
1: हाँ।
0: और चुभती नहीं है, गोल है ना, किसी भी बच्चे को चुभेगी नहीं। अब इसके अंदर थोड़ी सी मलाई डाल लीजिए, हाँ हल्दी डाल लीजिए, मलाई डाल लीजिए, और चंदन तो है ही है इसके अंदर, और अगर बहुत मतलब मलाई अच्छा, बच्चों के लिए मलाई अच्छी है, और थोड़ा चाहे तो ग्लिसरिन भी डाल सकते हैं या शहद डाल लीजिए, और दूध डाल के इसका अच्छे से एक स्क्रब बना लीजिए, रोज इससे नहलाना शुरू कीजिए, हल्दी भी गोरा करेगी। आप गोरा करने के लिए एक है केसर, तो दूध में थोड़ी देर केसर डाल के रख दीजिए तो केसरी दूध बन जाएगा, उससे इसका स्क्रब बना लें।
1: ओके
0: ये अगर मैं खसखस से या पीली सरसों से कभी भी उनकी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा. तो स्क्रब है पर स्क्रब जैसा नहीं है. सो दैट विल डेफिनेटली वर्क. और मैं पक्का कह सकती हूँ कि रंग गोरा जरूर होता है. मैंने अपनी बेटी का किया इसलिए मैं जानती हूँ.
1: अच्छा, ये सभी बच्चों की समस्या खास तौर पर होती है कि जो उनका नेचुरल कलर है ना वो चला जाता है क्योंकि वो धूप में खेल रहे होते हैं.
0: जी जी जी.
1: कई बार वो स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है.
0: हाँ, ये कलर माइन से केवल
1: पूरी बॉडी पे लगाया जा सकता है.
0: पूरी बॉडी को मसाज कीजिए थोड़ा. पूरी बॉडी खुद बनाएंगे ना तो
1: लगा
0: भी नहीं पड़ेगा
1: थोड़ी देर.
0: नहीं नहीं, मसाज कर लीजिए बस. मसाज करते करते 5-2-3 मिनट रख लीजिए तो बहुत अच्छी बात है. नहीं तो धो दीजिए पर अच्छे से मसाज कर दीजिए.
1: कोई ऑयल नहीं डालना इसमें.
0: मलाई डाली. मलाई नहीं डाल रहे तो ऑलिव ऑयल डाल लीजिए, आलमंड ऑयल डाल लीजिए,
1: वाइटमिन
0: ई ऑयल डाल लीजिए तो पूरी बॉडी को नरिशमेंट भी मिलती है. कुछ भी डाल सकते हैं इसमें.
1: एक सवाल निधि का आया है प्रयागराज से. इन्होंने कहा कि क्या रेमेडीज है व्हाइट हेड्स के लिए.
0: व्हाइट हेड्स को एक्चुअली वो अंदर आपका जो है ना ऑयल तो निकला है लेकिन बाहर नहीं निकल पाया. अगर तो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं और बड़े बड़े मोटे मोटे दिख रहे हैं तो आप कोई पिन लेके किसी एक्सपर्ट से करवाते हैं, किसी बाले में पिन लेके थोड़ा सा निकाल देते हैं व्हाइट हेड्स को. अदरवाइज होम्योपैथिक मेडिसिन हमारे पास होती है. जो होम्योपैथिक मेडिसिन अगर हम देते हैं खाने को तो अंदर से ही ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और व्हाइट हेड्स होने बंद हो जाते हैं.
1: ओके
0: जी.
1: पैंथर तोमर, अब हमने जो बातें की ना वो सारी हमने स्किन पर क्या लगाएं की बात करी. लेकिन हम क्या खाएं पर बात करते
0: बहुत
1: हैं जिससे स्किन अपने आप ही ग्लो करे या फिर बाल अपने आप ही अच्छे रहें.
0: ये मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोगों को लोग से हम लोग सोचते हैं फेशियल कराएंगे और बहुत खूबसूरत हो जाएंगे पर फेशियल ज़रूर फ़ायदा देता है. आपकी स्किन को अपलिफ्ट करता है, आपकी स्किन को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है. तो जो आप खा रहे हैं वो लगेगा लेकिन खा कह रहे हैं यही तो इम्पोर्टेंट है. अगर हम अच्छा खाना नहीं खाते, अगर हमारी स्किन अब हमारी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हैं, हम मेडिसिन खा रहे हैं उनका असर बहुत ज़्यादा होता है. और खाने में क्या खाएं, पानी ज़रूर पीना है अच्छे से ताकि आपके जो आप खाएं वो आपकी पूरी बॉडी में पहुँच पाए और आपके जितने टॉक्सिन्स हैं बाहर निकल पाएँ. तो दिन में 12-15 ग्लास पानी ज़रूर पिए. खाने में फल फ्रूट खाएँ और प्रोटीन का अमाउंट बढ़ाएँ. प्रोटीन से आपके बाल, आपके नेल्स, आपके वैसे भी आपकी पूरी बॉडी जो बनती है वो भी प्रोटीन से बनती है. तो कैल्शियम ज़रूरी है आपके बाल और उसको नेल्स को बनाने के लिए भी. तो खाने को अच्छा संतुलित आहार जिसे हम बोलते हैं फ्रूट्स ज़रूर ऐड करें. आजकल कलरफुल वेजिटेबल्स इतनी मिल जाती हैं, कलरफुल वेजिटेबल्स अपने खाने में ऐड कीजिए. कलरफुल वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके स्किन को, आपके बालों को, आपकी बॉडी को बहुत अच्छा रखते हैं. तो वो भी खाएं. प्रोटीन का अमाउंट ज़रूर है. दूध बच्चे पी लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो पनीर बना के खिला दीजिए. पनीर आजकल इतने ज़्यादा रेसिपीज हैं, सिर्फ पनीर से इतनी अच्छी आइसक्रीम बन जाती है पता है. चॉकलेट डाल के बच्चों को इतनी पसंद आती है, जिसमें खजूर डालिए, चॉकलेट डालिए, पनीर डालिए, उसी से इतनी अच्छी आइसक्रीम बन जाती है जिसमें बच्चों को कोई नुकसान नहीं और बड़ों को भी जिनको शुगर है उनको भी नुकसान नहीं होता. तो खाने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, संतुलित आहार लेना ज़रूरी है. वाइटामिन सी, वाइटामिन ई, वाइटामिन ये सारे वाइटामिन्स भी होने चाहिए. पूरी फूड की अगर हम बनाए तो रेसिपीज अलग अलग बनाए जा सकते हैं. आप स्प्राउटेड दाल खाइए, इसमें इतना अच्छा प्रोटीन होता है. जो मैं तो वेजिटेरियंस की बात ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मुझे वही याद रहता है. आप चिकन खाइए, फिश खाइए जो बहुत अच्छी है आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन स्प्राउटेड दाल खाइए. और स्प्राउटेड दाल के एक बहुत अच्छा एक छोटी सी रेसिपी क्विकली बनाती हूँ. स्प्राउटेड दाल को हल्का सा आप चाहें तो स्टीम कर सकती हैं, माइक्रोवेव कर सकते हैं, नहीं तो उसको वैसे भी खा सकते हैं. और उसके अंदर थोड़ा सा पनीर डालिए, नींबू डालिए. देखिए सारे विटामिन आते जा रहे हैं. पनीर डालिए, नींबू डालिए, टमाटर डालिए, थोड़ा सा प्याज डालिए और उसको चाट मसाला डालिए के इतनी स्वाद आपकी चाट बन जाती है. बच्चों को भी पसंद है, बड़ों को भी पसंद है.
1: बिल्कुल. एक सवाल जो लगभग सभी 40+ जो जो लेडीज हैं उनके लिए या फिर जेंट्स के लिए भी ये होता है कि उनके थोड़े दिन बाद ना बाल उड़ने लग जाते हैं. उनको समझ नहीं आता क्या प्रॉब्लम कहाँ हो रही है. और 47 साल की उम्र है जो ये सवाल आया, उन्होंने लिखा है, इनका नाम नहीं दिख रहा है मुझे, इन्होंने लिखा है कि पीछे से उनके बाल हल्के हो गए हैं और रूखे और बेजान लगते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं, तो ऐसे में मैं क्या करूं.
0: उड़ गए हैं तो वैसे मैं बता रही थी, अभी मैंने बताया भी था कि कोई हेयर टॉनिक मार्केट से ले सकते हैं, वो लगा सकते हैं जिसमें कॉपर पेप्टाइड हो, तो पक्की बात है कि बाल वापस आ ही जाएंगे। लेकिन घर में भी अगर चाहें तो मेथी ले सकते हैं, मेथी को तेल में डालिए, मेथी, आंवला, शिकाकाई, इन सबको तेल में डालिए, उस तेल को बॉयल कर लीजिए या पानी में डाल के उसको बॉयल कर लीजिए, जब 1/4 रह जाए तो उसके अंदर, इसके अंदर आजकल रोजमेरी के लीव्स बड़े आसानी से बाजार से मिल रहे हैं, तो रोजमेरी के लीव्स डाल सकते हैं। घर में रोज़ आप खाना सब्जी बनाते हैं ना, उसके उससे छिलके, प्याज के छिलकों को रख लीजिए, वो भी उसमें डाल दीजिए और प्याज डाल दें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो नहीं तो फिर कलौंजी डाल लीजिए, वो भी प्याज का ही है पार्ट। तो इसका कलौंजी का तेल डाला लगाया जाता है, अगर तेल लगाना चाहते हैं, और कलौंजी को पानी में डाल, जैसे मैंने बाकी चीज़ें बताई सारी चीज़ों में कलौंजी भी डाल लीजिए, प्याज डाल लीजिए, प्याज के छिलके डाल लीजिए, इनको बॉयल कीजिए। तो बॉयल करने के बाद जब 1/3 1/4 रह जाए पानी, वो आपका एक हेयर टॉनिक बन गया है। तो उस हेयर टॉनिक को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, मसाज कीजिए, डेफिनेटली बाल आ जाएंगे। अभी अभी अभी गिरे तो पक्का आ जाएंगे।
1: और कंचन सोनिया बिहार से सेम समस्या लिख रहे हैं, 32 ईयर्स की एज है, बहुत ज़्यादा इनके बाल झड़ते हैं, कुछ इलाज बता दीजिए।
0: अभी बताया
1: तो जो आपने बताया ये काम कर जाएगा। वैसे सवाल इतने सारे हैं ना कि मुझे लग रहा है कि 1-2 घंटे और ले लेते हैं आपका लेकिन क्या करें, टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन चलते चलते 1-2 सवाल तो आपसे ले ही लेती हूँ, जो बहुत ज़रूरी है कि इस सीज़न में क्या होता है, ऑलरेडी स्किन पर मॉइस्चर होता है, तेल जैसा लगता रहता है, तो क्रीम लगाएं या नहीं लगाएं?
0: मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर में पानी ज्यादा होता है, ऑयल कम होता है, तो मॉइस्चराइजर लगाइए। तो मॉइस्चराइजर लगाने से आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, ह्यूमिड है, ह्यूमिड कितना भी हो मौसम, लेकिन मॉइस्चराइजर की फिर भी जरूरत होती है, पानी और तेल दोनों का बैलेंस जरूरी है।
1: और पिगमेंटेशन, इसकी समस्या बढ़ जाती है?
0: हाँ, पिगमेंटेशन है तो आपको मैं बताती हूँ, एलोवेरा का आप जेल लगाइए, उसके अंदर मुलट्ठी का एक्सट्रैक्ट मिलता है।
1: अच्छा,
0: मुलट्ठी का एक्सट्रैक्ट डालिए, दोनों को मिक्स कीजिए, लगाइए, पिगमेंटेशन कम हो जाएगी।
1: एक्सट्रैक्ट अलग से मिलता है?
0: हाँ हाँ, बाजार से मिल जाता है। लेकिन
1: पिगमेंटेशन पाउडर भी डाल सकते हैं क्या?
0: पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, पिगमेंटेशन जो है बहुत बड़ी समस्या है, उसके अंदर तक जाके वजह जानना जरूरी है, वजह को हटाना जरूरी है।
1: एक बहुत कॉमन चीज हो गई है आजकल, चावल का पानी, लोग चावल के बहुत सारे रेमेडीज बताते हैं, किसी से भी पूछ लीजिए वो बता देंगे।
0: कोरियंस ने सिखा दिया, हम यूज कर रहे हैं पहले से चावल,
1: तो क्या हम हमारे हर जाएंगे?
0: हाँ, हमारे हर स्क्रब में चावल का आटा रहता है। हाँ, तो हम तो पहले चावल इस्तेमाल
1: कर रहे हैं, तो ये चावल का पानी कितना कारगर है?
0: चावल का पानी जो है स्प्रे की तरह अपने बालों में लगाए, बाल भी अच्छे हो जाएंगे, फेस पे लगाए, फेस भी अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा कारगर है। आप रोज चावल की मांड जो है ना फेंकते हैं ना, उसको मत फेंकिए, उसको चावल खाइए, उसकी मांड जो फेंक रहे हैं उसको फेस पे लगाइए, बालों में लगाइए, फेस भी अच्छा और बाल भी अच्छे।
1: अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि चलने का वक्त तो आ गया है, लेकिन एक स्किन केयर जाते जाते पूछ लेती हूँ, रात में सोने से पहले क्या करें हम?
0: सोने से पहले फेस को वॉश करें, और एज के हिसाब से आप ऑयल लगाएं या कोई कोलेजन लगाएं या एचए क्रीम लगाएं, वो ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूरी जाने से पहले फटाफट बताना चाहूँगी, लोगों को लगता है कि आजकल सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं, बादल इतने तो सन तो है ही नहीं, उनको दिख नहीं रहा, लेकिन सन की रेज है, तो प्लीज़ सनस्क्रीन लगा के ही निकलें।
1: ओके, ग्रेट मैम, ऐसा लग रहा है पूछती जाऊं लेकिन क्या करूं टाइम है जिसकी फाउंडेशन हम मैटर करती है, क्योंकि अभी प्रियंका आ गई है अगला शो आशियाना लेकर, तो वो शुरू करेंगी अपना शो। उससे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप आई स्टूडियो में, इतना कीमती समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हम सबके लिए।
0: थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू सो मच। तो ये थी डॉक्टर भारती तनेजा, ब्यूटी एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ी आज बात की स्किन एंड हेयर केयर इन मानसून पर। आपके साथ मैं बबिता त्रिपाठी थी, फिलहाल जाती हूँ, प्रियंका आ गई है, टाटा बाय, टेक केयर, अपनी स्किन का ढेर सारा सवाल ख्याल रखिए, पानी पीजिए खूब सारा, और हाँ, जो जो मैम ने बताया है उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। बाय।

एफएम रेनबो पर अब वक्त है मुख्य समाचारों का। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के संसदीय दल की बैठक आज संसद भवन में जीएमसी बालयोगी सभागार में हुई। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तगमांग से बातचीत की। उन्होंने नामची जिले में निर्माणाधीन सुरक दुर्घटना के बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। सिक्किम के नामची जिले में समरदुर्ग स्थित एनएचपीसी तिस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने आज कैंसर और संक्रामक रोगों के उपचार संबंधी समाधान विकसित करने के लिए 3 स्वदेशी जैव चिकित्सा तकनीकों को अग्रणीय भारतीय दवा और वैक्सीन निर्माताओं को लाइसेंस दिया है। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। औषधि महानियंत्रक ने डकेडा बायोफार्मास्यूटिकल इंडिया द्वारा विकसित क्यूडेगा वैक्सीन के विपणन को अनुमति प्रदान की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपजे में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ वार्ता करेंगी। भारत ने 19 जुलाई को वाणिज्य जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले को लेकर आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लदानोव को तलब किया। बलूचिस्तान में मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि एक नाबालिग लड़की सहित 4 अन्य नागरिकों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जबरन लापता कर दिया है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फरबाद में अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। तो ये थे एफएम रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर मैं प्रियंका मामगेन आप सभी का स्वागत करती हूं आशियाना प्रोग्राम में। आज हमारे साथ वुमेन स्पेशल सेगमेंट रहता है और इस सेगमेंट में हम बात करते हैं महिलाओं की, उनके जज्बों की, उनके हौसलों की, उनके प्रयासों की, उनकी सफलता की। और आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की SI सीमा ढाका की।

आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी, हमारे साथ आशियाना प्रोग्राम वुमेन स्पेशल, और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीमा ढाका के प्रयासों की शक्ति की। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली वासियों को सुरक्षा प्रदान करती हमारी दिल्ली पुलिस, शांति, सेवा, न्याय, और आज एएसआई सीमा ढाका की शक्ति, प्रयासों की शक्ति हमारे साथ। सीमा ढाका की बात की जाए तो उनका जन्म यूपी के शामली के भज्जू गांव में हुआ। घर में माहौल टीचिंग का था, शिक्षा का था। अधिकतर उनके रिश्तेदार और घर परिवार के लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो ऐसे में सीमा और उनके माता पिता भी चाहते थे कि उनकी बेटी शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़े और टीचर बने। सीमा की आरंभिक पढ़ाई, 12वीं तक की पढ़ाई स्कूल के ही सरकारी स्कूल में हुई, भज्जू गाँव के स्कूल में हुई। और जब कॉलेज की बारी आई तो सीमा ढाका रेगुलर कॉलेज की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन गांव से कॉलेज बहुत दूर था और घर में सभी ने समझाया कि वो डिस्टेंस लर्निंग से अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करें, लेकिन सीमा ढाका की लगन थी कि वो रेगुलर कॉलेज से ही पढ़ाई करना चाहती हैं अपनी। और उनकी लगन को देखकर उनके माता पिता ने उनका एडमिशन रेगुलर कॉलेज में करवा दिया और उन्हें एक साइकिल भी दिलवा दी। सीमा रोज 12 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर का सफर तय कर अपने कॉलेज की पढ़ाई करने कॉलेज पहुंचती। एक लड़की जो सूट पहनकर साइकिल चलाते हुए कॉलेज जा रही है, ये बात वहां के लोगों के लिए उस वक्त अटपटी सी थी और वो सीमा को बहुत ही अलग नजरों से देखते थे। लेकिन सीमा इन सभी बाधाओं की परवाह नहीं करते हुए आगे बढ़ रही थी, आगे बढ़ना चाहती थी और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती थी, वो टीचर बनना चाहती थी। लेकिन एक दिन कॉलेज में उनकी फ्रेंड्स से उन्हें पता चला कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद की भर्ती खुली हुई है और उनके जो फ्रेंड्स थे वो ये फॉर्म्स भर रहे हैं, तो उनका भी मन हुआ कि क्यों ना दिल्ली पुलिस में जो फॉर्म्स निकले हैं, जो पद रिक्त हैं, उनके लिए ट्राई किया जाए। उन्होंने घर में बात की और फिर उन्होंने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के जो पद की भर्ती निकली थी उसके फॉर्म को भर दिया।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू। सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी। ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए, नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए।
3: मैं रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने।
4: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, अब एक नए समय पर, हर गुरुवार शाम 4 से 5 FM रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आशियाना प्रोग्राम विमेन स्पेशल, और आज हमारे साथ दिल्ली पुलिस की ASI सीमा ढाका की प्रेरणादायक कहानी। दिल्ली पुलिस आपके लिए, आपके साथ हमेशा। सीमा ढाका जब दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करना चाहती थी और उन्होंने दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का जो रिक्ति पत्र था, पद भरने का पत्र था, फॉर्म था, उसे भरा, तो उसके बाद सीमा ढाका फिजिकल टेस्ट की तैयारी करने लगी। और जिस सड़क पर से वो कॉलेज जाया करती थी और जिस सड़क पर साइकिल चलाते हुए वो कॉलेज जाया करती थी, उसी सड़क पर वो दौड़ने लगी। उस वक्त भी लोग उन्हें अजीब सी नज़रों से देखते थे कि एक लड़की टी शर्ट और लोअर पहनकर सड़क पर दौड़ लगा रही है। सीमा को ये बातें परेशान तो करती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिजिकल टेस्ट पास किया, रिटर्न टेस्ट पास किया और फिर साल 2006 में उन्होंने एज ए कांस्टेबल दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया और दिल्ली आ गई। यूपी के शामली के भज्जू गांव की लड़की का दिल्ली जैसे बड़े शहर में अकेले रहकर जॉब करना आसान नहीं था। वो नई जॉब के चैलेंजेस के साथ साथ अपनी डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस भी फेस कर रही थी और आगे बढ़ रही थी। और इसके कुछ समय बाद ही उनकी शादी अनिक ढाका से हुई, जो दिल्ली पुलिस में ही जॉब करते थे। इससे सीमा को बहुत सपोर्ट मिला और वो बेहतरी से आगे बढ़ने लगी। और फिर साल 2014 में सीमा ढाका ने दिल्ली पुलिस की विभागीय परीक्षा पास करके हेड कांस्टेबल के पद को ज्वाइन किया।

सीमा ढाका साल 2014 में हेड कांस्टेबल बनी तो वो कुछ अलग करना चाहती थी और उन्होंने अपने पुलिस स्टेशन के सीनियर्स ऑफिसर्स से बात की कि वो केसेस को इन्वेस्टिगेट करना चाहती हैं, जो केसेस की जांच पड़ताल के कार्य होते हैं उनमें अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहती हैं। और फिर सीमा ढाका को 100 नंबर पे, दिल्ली पुलिस के 100 नंबर पे जो कॉल्स आती हैं उन केसेस की इन्वेस्टिगेशन का काम सौंपा गया। सीमा जब पुलिस केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाती तो वहाँ भी लोग उन्हें बड़ी अचरज की निगाहों से देखते थे कि एक महिला पुलिस केस की जांच पड़ताल के लिए आई है, लेकिन सीमा इस काम से हटी नहीं और पूरी लगन और निष्ठा के साथ वो आगे बढ़ती रही।

दिल्ली पुलिस की पहली महिला कर्मचारी जिन्हें उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। साल 2020 की बात की जाए तो साल 2020 में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री एस एन श्रीवास्तव द्वारा गुम हुए बच्चों को ढूंढने का अभियान ऑपरेशन चलाया गया। सीमा अपने थाने के काम के अलावा कुछ हटकर करना चाहती थी, तो उन्होंने भी अपना नाम इस ऑपरेशन के लिए लिखवा दिया और फिर पूरी शिद्दत के साथ काम में जुट गई। गुम हुए बच्चों को ढूंढना, तलाशना, उन्हें खोज निकालना और वापस उनके परिवार से मिलाने का काम आसान नहीं था, लेकिन सीमा ढाका पीछे नहीं हटी। उन्होंने गुम हुए बच्चों की लिस्ट निकलवाई, उनके परिवार वालों, रिश्तेदारों से मुलाकात कर गुम हुए बच्चों की ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त की और फिर जुट गई गुम हुए बच्चों की तलाश में।

दिल्ली पुलिस की एएसआई सीमा ढाका सुबह काम पर लग जाती और कई बार रात को 1-2 बजे तक बिना रुके काम करती रहती थी। कई बार ऑफ ड्यूटी रात को जब उन्हें गुम हुए बच्चों की कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती तो वो अपने हस्बैंड अनिक ढाका के साथ उस इन्वेस्टिगेशन पॉइंट पर पहुंच जाती और काम करना शुरू कर देती। दिल्ली पुलिस की एएसआई सीमा ढाका की मेहनत रंग लाई और उन्होंने महज 75 दिनों में 76 गुम हुए बच्चों को ढूंढकर उनके परिवारों से मिलवाया। ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना आसान नहीं है और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें साल 2020 में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया और उन्हें हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। वो दिल्ली पुलिस की पहली महिला कर्मचारी हैं जिन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से नवाजा गया। जी हाँ, एएसआई सीमा ढाका, उन्हें दिल्ली वुमेन कमीशन द्वारा सम्मानित किया गया, कई सारे अवार्ड्स मिले दिल्ली पुलिस द्वारा सम्मानित किया गया और सीमा के कई सारे इंटरव्यूज़ आप कई सारी जगहों पर देख सकते हैं और कई सारे उनको अप्रिशिएशन लेटर्स मिले जो उनके कार्य को सराहने के लिए बहुत ही ज़रूरी थे और कहीं ना कहीं प्रेरणा दे रहे थे दूसरे लोगों को भी कि जो सही काम होता है उसकी हर जगह तारीफ़ ज़रूर होती है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। अभी की बात की जाए तो आज एएसआई सीमा ढाका दिल्ली के शालीमार बाग पुलिस स्टेशन में पोस्टेड हैं और वो पुलिस स्टेशन के कार्यों के अलावा अभी भी गुम हुए बच्चों को ढूंढने का जो अभियान है उसे जारी रखे हुए हैं। अभी तक उन्होंने 450 से ज्यादा गुम हुए बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाया है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की एएसआई सीमा ढाका एक मिसाल है कि जो अच्छा काम करते हैं और जो नेकी के साथ आगे चलते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। एफएम रेनबो परिवार सीमा ढाका के प्रयासों की शक्ति को नमन करता है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अब वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम का।

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश
1: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू सुजा

0: लता साहू जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
1: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
1: जी।
0: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
0: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
1: राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
0: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
1: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
0: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
1: जी हाँ श्रोताओं, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
0: जी,
1: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
0: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं
1: जी।
0: तो बिमलेश जी करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
1: अजीत जी आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
0: जॉन बील मेला
1: जी,
0: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो
1: जी।
0: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
1: अजीत जी ये भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी
0: जी। पूछिए पूछिए।
1: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है।
0: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
1: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे, क्या लेन देन होता ही नहीं था, बताइए बताइए।
0: विमलेश जी लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
1: अजीत जी वो तरीका था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना, ये बहुत प्राचीन तरीका था
0: जी। बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं। कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर।
1: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
0: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है
1: जी।
0: विमलेश जी जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
1: जी जी जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी
0: जी। श्रोताओं इस मेले में असम और मेघालय की टीवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
0: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं, और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है
1: जी।
0: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
1: श्रोताओ माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
0: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे
1: जी। फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
0: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
1: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली

0: ली ही है।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी अनूठे जोन व्हील मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जोन व्हील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जोन व्हील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं, सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
0: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: सांकेन।
2: आज बल्लरी बहुत उत्साहित है, क्यों? आइए जानते हैं।
3: यमन भैया कहाँ हो भैया?
4: यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ,
3: चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो। भैया, खुश होने की बात तो है ही, पता है पापा का ईमेल आया है।
4: अच्छा, क्या लिखा है?
3: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है, कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ, माँ।
5: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहां जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है। टिकट भी भेज दिए हैं।
2: वल्लरी, यमन और उनकी माता जी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
3: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
4: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
5: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी, कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
2: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
5: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
2: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
3: नमस्ते पापा।
2: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बेटा आप लोग?
3: ठीक है।
2: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
3: बड़ा मजा आया।
2: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो सामान उठाओ अपना, टैक्सी पे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
5: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
2: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया। अरे भाई चौतान जी घर पर हैं क्या?
6: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते।
3: नमस्ते अंकल।
6: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी है ना?
2: बिल्कुल ठीक पहचाना।
6: आइए, स्वागत है आप सबका।
2: धन्यवाद।
6: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा वर्मा।
2: अरे भाई, हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
3: अंकल, हमारा यहाँ आने का बहुत मन था, बड़ी सुंदर

0: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया ही हूँ। सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
1: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
2: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
1: बेटा, ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े, ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है, ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
0: अरे वाह वाह वाह भाई, मैं तो चाय पीऊंगा।
3: ये तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
1: थैंक यू।
0: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
1: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
0: अच्छा
3: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
1: बेटा, इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
0: जल उत्सव क्यों?
1: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
0: अच्छा।
1: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हो।
0: हाँ।
1: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं।
0: जी।
2: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
1: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
3: तो हम भी चले?
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
3: चलो चलो चलो, चलो।
4: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुंची। वहां की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
5: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
4: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
3: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
5: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
4: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
1: बच्चों, 3रे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
3: अच्छा।
1: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़ कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
3: जी अंकल।
1: गांव के लोग 3रे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
6: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
1: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
6: हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
1: हाँ।
5: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश, तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग। सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
7: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को, पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन

0: मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और साथ ही साथ सांकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
1: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओ, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड, इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड, so we will sing the happy song again but with a difference.

0: clap and smile.
1: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
2: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan, sung by Neha and Children, recorded by Butty Langdingdo, produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET-NCERT, New Delhi, India. श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुम लता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ फिमलेश को आज्ञा दीजिए.
2: नमस्कार.
4: FM Tracker Band.

को होने पॉपुलर के मैंने प्यार किया फिल्म पर से लता मंगेशकर लगा वास्ते और तो गीत करने लिखी गिना पता से जुनाई मेसा की सपोरी धेमाजी असम परा तो तय के लगा साथी कन के तय तो

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
3: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
4: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें

0: रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोग को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
1: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
2: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिविंग रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटना स्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
3: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की, ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रूपये की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले तीन दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाये रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government says it is ready to discuss NEET paper leak issue and other related matters in Parliament. Both houses adjourned for the day amid opposition protests. Prime Minister Narendra Modi vows strict action against those involved in NEET issue, says government taking steps to prevent such incidents. India and North Macedonia agree to enhance trade and cooperation in key sectors after presidential level talks in Skopje. Madhya Pradesh Assembly passes Uniform Civil Code Bill. US and Iran trade strikes for the 10th day in a row, mounting tensions over Strait of Hormuz. And in hockey, 20-member Indian squad led by Harmanpreet Singh announced for the Men's World Cup set to begin next month. And now the news in detail. The government today said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi this evening, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
4: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you are saying no.
3: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site at Lok Kalyan Marg. Mr. Gandhi told them that if the government agreed to a discussion in Parliament on NEET and related issues, he would immediately end the protest. After meeting the Congress leaders, Union Minister Dr. Jitendra Singh informed that the government accepted the demand of holding discussion over the matter. However, the Union Minister said that when the government's stand was conveyed to the Congress leader, Mr. Gandhi backtracked from his earlier stance and added more demands.
4: Then I told him, this doesn't behove an LOP to change stance and change goalposts that frequently and just within a couple of minutes. It's very unfortunate, the leader of such stature, the LOP, has conducted himself like this, particularly so when this morning itself, Prime Minister Modi ji gave out a very candid assurance to the countrymen that nobody responsible for the paper leakage episodes will go scot-free. Not only that, he went on to say that the severest punishment would be accorded to the persons who are found involved in this.
3: Later, senior Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav and other opposition party members were detained by Delhi police during the protest near Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the Parliament, both Lok Sabha and the Rajya Sabha were adjourned for the day following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the NEET paper leak case today. Our correspondent has the details.
5: The proceedings of both the Houses of Parliament were marred by the repeated adjournments for the second consecutive day of the monsoon session. Both the Houses were adjourned thrice following opposition uproar. The opposition parties were sloganeering on the NEET paper leak case and other issues. Due to the disruptions, question hour and zero hour in both the Houses could not be taken up. In the Lok Sabha, Speaker Om Birla and subsequently the presiding officers repeatedly urged the protesting members to maintain decorum in the House and allow it to take up listed business. But as the pandemonium continued, the House had to be adjourned again and again. The scene was also no different in the Rajya Sabha. Despite repeated appeals by Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan and Deputy Chairman Harivansh, the protesting members continued with their sloganeering, leading to adjournments of the House. With Suparna Sakia, Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
3: Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent NEET examination paper leak case and safeguarding the interests of the country's youth. He said the government is taking several measures to prevent such incidents. Mr. Modi said this while addressing the National Democratic Alliance Parliamentary Party meeting, now also known as Mangal Milan, at Parliament House complex today. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said, during the meeting, Prime Minister Modi called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country.
6: पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया.
3: As soon as reports of paper leak emerged, the government took swift action. 13 individuals were arrested and sent to jail. To ensure that the future of students was not affected, the NEET re-examination was conducted.

विष्णु स्क्रीमित डेट्स एंड कॉल्स हिंदी फिल्म गान प्रोग्राम टे सेस को टाइम हुई है प्रोग्राम सेस से शुनि अपने कुमार शानू और लता मंगेशकर का वास्ते फिल्म से दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और ये तो गीत लगे प्रोग्राम तो शेष कर समय दस बजे हाल के एफ एम ट्रेक पान बंद कर दिया हम और एफ एम ट्रेक पान अहि पुजो आको छः बजे पर शुरू हम सो विशिंग यू ऑल ए वेरी गुड नाइट।

जीतने के लिए प्रयासरत। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार छात्रों की हर वास्तविक चिंता पर चर्चा करने और समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया। सरकार ने बताया, इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली का दौरा करेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार के कर्मचारी के लिए 7वें वेतन आयोग को चालू वित्त वर्ष के अंत तक लागू करने की संभावना जताई। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा और भारत ने अगले महीने होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की।

0: आकाशवाणी।
1: श्रोताओं एक बार फिर से स्वागत है एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपकी साथी दुर्गेश और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आराधना। आइए सुनते हैं डिवोशनल सॉन्ग्स नॉन स्टॉप।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।